नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन को आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम खेत खलियान में बहुत ही बहुत स्वागत करत हेंगे। और हमारे किसान साथी उनको बता दे, वो चाहते हैं कि आज के हमारे जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम में आज बतकाव करने जा रहे हैं कि हमारे किसान साथी कैसे, ऐसे में किसान साथी टमाटर की नर्सरी कौन तरीके से कर सकते हैं, अब ऐसे खेत की तैयारी कर ले और कौन तरीके से हमारे किसान साथी कौन सा बीज लगा सकते हैं, वह विषय पर बतकाव करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि खेत कल्याण कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बतकाव को लेकर आते हैं और हमारे किसान साथियों को बहुत छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे किसान साथियों की आय को दुगनी करने के लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। खासतौर पर देखो जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अब खंड खंड वर्षा होती है और ऐसे में किसान साथी, हमारे बहुत सारे किसान साथी जो खेती पर आश्रित रत हेंगे, तो ऐसे में हमें किसान साथी का कर बहेंगे। तो खेती के संगे संगे चूंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जा वक्त बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हैगी और हमारे किसान साथी फ्री बैठे हुए हैं, तो अब किसान साथी उनको अगली फसल की तैयारी कर ले चज्जित और अपनी आय तभी दुगनी हुए जब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि खेत खाली हेंगे अपन नर्सरी भी कर सकते हेंगे और संगे संगे हम अपन फलदार वृक्ष भी अपन लगा सकते हेंगे अपने, और नर्सरी भी लगा सकते हैं, फूलन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे विकल्प है खेती किसानी में जो हमारे किसान साथी करके अपनी आय को बढ़ा सकते हेंगे। तो आज हमारे संगे विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सिंह जुड़ेंगे और वो बतकाव करेंगे और बताएंगे कि जब गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, कौन सा बीज और का का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मट्टी को बनाना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पूरी जानकारी जो कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे अपन। लेकिन जैसे पहले अपन कैसे मौसम आधारित अपन खेती करत हेंगे और मौसम का कुछ ठिकाना नहीं रहता है कि कब बरसात हो जाए, कब या धूप न करे, ऐसे में हमारे किसान साथी आप का करबे तो मौसम आधारित खेती करबे। कार्यक्रम को आगे बढ़ात भाई अपन

एक नौ नौ सौ लोकगीत सुन लिए हैं और जाके बाद हम अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लौटा चले और उनसे जाना है कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से टमाटर की नर्सरी खेती कर सकते हैं, कौन वैरायटी अपने खेतन में लगा सकते हैं। तो आओ सुनाते हैं जो नौ नौ सौ लोकगीत को।

से अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित।

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अबे अपन ने जो नोनो सो लोकगीत को सुनो, लोकगीत को आनंद लाओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो भाई अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुआ चला थेंगे और उनसे जानते हैं कि टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कौन तरीके से लगा सकते हैं, का सावधानी उनको बरतने चाहिए, आओ सुनाते हैं जा चर्चा को। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से, अब चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो टमाटर की बहुत ज्यादा महंगाई भी हैगी, टमाटर की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन बातन को उनको ध्यान में रखें चाहिए।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है, आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है, हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल

0: तो आप देखेंगे जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है आप अक्टूबर में जो बुवाई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटी है, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, तो आप देखें पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो ये है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथिन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रॉन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं, पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं, हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केंचुए की खाद भी उपलब्ध है तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छे से बुराई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक घर भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं तो वो आर्द गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डायथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है और उस पर आप ध्यान रखें। रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डायथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे तो इससे किसी भी तरीके के चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों अब अपन ने डॉक्टर साहब से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुनो है गो और अपन ने जानो के कौन तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं टमाटर की के नर्सरी लगा सकते हैं और संगे संगे कौन कौन सी वेरायटी हो सकते हैं। उनने पंजाब की कछु वेरायटी बताई है, कछु वाराणसी की वेरायटी बताई है जो बहुत अच्छे आपको उत्पादन देगी, तो ऐसे ही वेरायटी अपन हो समझने हैं सोचने हैं तब अपने खेतन में लगाने हैं। अब तैयारी करवो बहुत ज्यादा आवश्यकता है और संगे संगे

खेत जो खाली पड़े होंगे उनकी जुताई भी हमारे किसान साथी कर सकते होंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखे चाहिए उनको, कैसे आने वाला समय जो है बहुत महंगाई को हो जाएगा, कैसे अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपन को लगत लग जाएगी और मुनाफा अगर देखो जाए यानी उत्पादन देखी जाए तो बहुत कम होंगे। अब कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही हैंगी, तो उनको भी अपन को लाभ लेने, संगे संगे बीजन को चेंज जो अपन करते हैंगे तो कृषि विभाग की ओर से जो कृषि विस्तार अधिकारी रहेंगे उनके पास जाके अपन को संपर्क करने, उनसे पूछने हैं कौन तरीके के कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन तरीके से अपन को तैयारी करी जाइए। और संगे संगे एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से अपन को कि हमारे किसान साथी अभी चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो अपनी मिट्टी को परीक्षण अवश्य करा ले, कौन से तत्वों की कमी हैगी जो पता चल जाएगा, अगर जो पता चल जाए तो अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपन जाके भरपाई भी अपन कर सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है, अब जाके तत्व को पूर्ति करने के लाने कौन सी दवा अपन को डालना चाहिए, कौन सी का कौन से अपने हो बीज लगाना चाहिए, तो ये सारी जानकारी अपन को उपलब्ध हो जाते हैं। अपने पास फैसिलिटी हैगी, अगर अधिक जानकारी आपको पाने हैं तो केबी की चले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र, उतर जाके बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी अपन को उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे भी पूछो, वैज्ञानिक रहते हैं उनसे भी सलाह लो, तभी अपना आने वाले समय में अपन अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। आप साथी रहो, हम समय होते जा कार्य

आप सभी का स्वागत है हेल्थ ऑन एयर के पॉडकास्ट पर। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण का महत्व। प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आज का कॉलम लिया गया है सुमेंद्र बख्शी के आर्टिकल से। सुमेंद्र बख्शी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और कोविड वैक्सीन स्पेशलिस्ट हैं। आज इस पॉडकास्ट के द्वारा हम जानेंगे कि टीकाकरण क्यों महिलाओं के लिए गर्भावस्था में इतना महत्वपूर्ण होता है। यह सच है कि बच्चों के टीकाकरण की तुलना में गर्भवती महिलाओं में नियमित टीकाकरण का दर हमेशा कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पीडीएपी वैक्सीन का कवरेज 56.6% है। आज भी कई चिकित्सक और समुदाय के सदस्य गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण को लेकर झिझकते हैं, क्योंकि इससे गर्भावस्था के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिशु पर संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण गर्भावस्था के दौरान कई दवाओं का सेवन मना होता है। हालांकि जहां तक टीकाकरण का सवाल है, दुनिया भर में सुरक्षा मुद्दों का सख्ती से पालन किया जाता है, और अब हमारे पास स्पष्ट डेटा समर्थित समझ है कि क्या सुरक्षित है और क्या असुरक्षित है।

मातृ टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? मातृ टीकाकरण के दो अलग अलग फायदे हैं। सबसे पहले, यह गर्भावस्था की अवधि के दौरान मां और भ्रूण दोनों को गंभीर संक्रमण से बचाता है। और दूसरा, यह IgG और IgA एंटीबॉडीज के प्लेसेंट्रल ट्रांसफर द्वारा जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को संक्रमण से बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए यानी IgA, यह श्वसन पथ और पाचन तंत्र के स्तर के साथ साथ लार, आंसू और स्तन के दूध में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी यानी IgG, यह सबसे आम एंटीबॉडी है। यह रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में होता है। यह बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से बचाता है। गर्भावस्था के दौरान कौन से टीके लगवाना वर्जित है? जीवनशील वायरस टीकों यानी लाइफ अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन्स से गर्भावस्था के परिणामों पर संभावित प्रतिकूल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध लाइफ के उदाहरण क्षीण टीके वायरल संक्रमणों के खिलाफ खसरा, कटमाला, रुबेला, चेचक, पीला बुखार, इन्फ्लुएंजा और मौखिक पोलियो वैक्सीन शामिल है। जीवित क्षीण जीवाणुरोधी टीकों में तपेदिक, BCG और मौखिक टाइफाइड टीका शामिल है। गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन का भरोसा कैसे बढ़ाएं? महिलाएं अपनी व्यापक घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अक्सर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपयोग करती हैं और अक्सर अपनी भलाई की उपेक्षा करती हैं। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के लाभों के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रमुख निर्धारक है। टीकाकरण के महत्व के बारे में सफल वकालत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की प्रमुख भूमिका है। गर्भवती महिलाओं के मन में सकारात्मक प्रभाव के लिए प्राथमिक देखभाल चिकित्सा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात टेटनिस से सुरक्षा के लिए टेटनिस टॉक्साइड वैक्सीन या TDAP की कितनी खुराक लेनी चाहिए? भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आमतौर पर 3 टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। इन टीकों में टेटनिस टॉक्साइड, TDAP और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शामिल है। टेटनिस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जिससे माँ और नवजात शिशु दोनों को खतरा होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के कारण यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इलाज न किए जाने पर घातक जोखिम पैदा कर सकता है। नवजात टेटनिस ठीक न हुए नाभि स्तंभ के संक्रमण के कारण होता है। वैक्सीनेशन ही इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका है। टेटनिस टॉक्साइड के टीके गर्भावस्था के दौरान भी सुरक्षित हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान 2 खुराक की सलाह दी जाती है, जिसमें 3 साल के भीतर अगली गर्भधारण के लिए बूस्टर खुराक होती है। पेटी टीकाकरण मातृ एवं नवजात सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे समय से पहले होने वाले बच्चे की जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलने पर TT1 यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए। TT2 TT1 के 4 सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए। यदि मां ने पिछली गर्भावस्था में 3 साल के भीतर TT2 की खुराक ली है तो भारत के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार TT की 1 बूस्टर खुराक की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि स्तनपान अवधि के दौरान कौन से टीकों की सिफारिश की जानी चाहिए। एमपॉक्स, चेचक और पीले बुखार के टीकों को छोड़कर अन्य सभी टीके जैसे निष्क्रिय, जिनमें की एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस ए, HPV, इन्फ्लुएंजा, JE, IPV और रेबीज आते हैं। इसी के साथ लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण वायरस, जिनमें इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स और थायराइड आता है, ये सभी लिए जा सकते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण, जिनमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनः संयोजक, जिनमें आते हैं हेपेटाइटिस बी,

मेनिंगोकॉकल। कॉन्जुगेट यानी संयुग्म जिनमें आते हैं एचआईवी, पीसीवी, मेनिंगोकॉकल। पॉलीसैकेराइड जिनमें आते हैं पीवीसी और टाइफॉइड। ये सारे वैक्सीन स्तनपान की अवधि के दौरान सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि बाल टीकाकरण दरों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अभी भी बड़े पैमाने पर वंचित हैं। टीकों पर विश्वास पैदा करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामान्य चिकित्सकों, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा बेहतर संचार रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। विश्वास निर्माण का यह प्रयास न केवल बच्चों और माँ की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टीकाकरण के समग्र रूप में समाज को मिलाने वाले व्यापक स्वास्थ्य लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
0: सर, मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती, अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे यहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सके। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थाई कृषि है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर, आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात करें और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, सर दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा है खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं, और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातु है, पानी, मृदा, वायु सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं।

0: कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, क्योंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है। तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती है, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
1: जी, अगर सर अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है? क्योंकि अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
2: जी, इसके अनेक लाभ है, और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी
1: जी।
2: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा
1: जी।
2: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव
0: होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा, और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर,
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों को उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
4: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
3: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों, आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था, और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवाल

0: में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

कार्यक्रम विधा बुंदेली और साथियों विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। सो आओ दोस्तों देर न करे तुम्हें कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनते हैं प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आओ सुनते हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से तरसन लगी नजरिया। मैया खोल दो, मैया खोल दो, दे द्वार की बरी।

से दर्शन लगी नजरिया, मैया खोल दो मैया खोल दो ये द्वार की किवरिया, मैया खोल दो द्वार की किवरिया।

खोला पलक झलक दई थी जय मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल पान बतासा

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन लगी नजरिया भैया खोल दो, भैया खोल दो जे द्वार की बरी।

देखो दोस्तों, जो कितना प्यार हो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लव है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आओ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों की गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कुकू लगाए। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन को लंगरवा कायर उठो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी के गाय भाई गीत को।

हो जा दयाल कृपाल महामाई अब की बीर। देखो दोस्तों कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, देवी गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया गोविंदास कुशवाहा जी। सो आओ दोस्तों गोविंदास भैया जी के गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, मैया भक्त खड़े पुकारे दूर में हुमा। देखो दोस्तों कितनो प्यारो जो भजन अपन सब जन ने सुनो, भजन को आनंद लो है। और दोस्तों ई भजन को जो गा रहे थे वे गा रहे थे किशोरी लाल कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया मनीराम मंचला जी। और अब मनीराम भैया मंचला जी के ये गीत के बाद हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गया है। सो दोस्तों, हमें दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को अजीत का अभिवादन
2: और विमलेश का नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लगातार कार्यक्रम को सुनने के लिए। और आज हम कार्यक्रम का प्रारूप थोड़ा सा बदलेंगे
2: जी।
0: अक्सर हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, लेकिन आज आरंभ करना चाहते हैं एक लघु कथा से
2: जी।
0: जो कि आप कहते हैं कि हमें लघु कथा बहुत पसंद आती है, तो आइए सुनते हैं आज की लघु कथा।
2: एक बार एक नौजवान शिष्य महान दार्शनिक सुकरात के पास आया और उनसे पूछा,
0: गुरुवर, सफलता का रहस्य क्या है?
2: सुकरात ने उससे कहा,
0: मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा, कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलो
2: जी। दूसरे दिन वो युवक सुकरात से नदी के किनारे मिला।
0: सुकरात उसे लेकर नदी में आगे बढ़ने लगे।
2: वे दोनों नदी में तब तक आगे बढ़ते रहे
0: जब तक नदी का पानी उनके गले तक ना आ गया।
2: और नदी के बीच में पहुंचकर अचानक ही सुकरात ने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया।
0: पानी के भीतर सांस लेने में अक्षम होने के कारण, श्रोताओ, वो युवक पानी से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से संघर्ष करता रहा,
2: लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ के सामने उसका ये संघर्ष विफल रहा।
0: मरता क्या ना करता, श्रोताओ, उस युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी प्रकार पानी से बाहर आ जाए।
2: पानी से बाहर निकलते ही वो युवक हांफते हुए तेजी से सांस लेने लगा।
0: उसे ऐसा करते देखकर सुकरात ने पूछा,
2: ये बताओ, जब तुम पानी के भीतर थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहते थे?
0: उस लड़के ने कहा, मैं चाहता था सांस लेना।
2: सुकरात ने कहा,
0: यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना सांस लेना, तो वो तुम्हें मिल जाएगी।
2: इसके अतिरिक्त सफलता का कोई और रहस्य नहीं है।
0: तो श्रोताओं, आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है
2: जी।
0: तो याद रखिए कि सफलता प्राप्त करने का रहस्य है
2: उसकी पूरी शिद्दत से चाह करना और वैसा परिश्रम भी करना।
0: जी हाँ, और वैसा परिश्रम भी करना
2: जी।
0: आपको बता दें श्रोताओं कि पिछले दिनों में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, और प्रश्न था कि इन दिनों ओलंपिक खेलों में विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं
2: जी। प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को क्या दिया जाता था?
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग किसी का भी उत्तर सही नहीं था। इसका उत्तर है, प्राचीन यूनान में प्रथम आने वाले को जैतून के पत्तों का मुकुट,
2: दूसरे स्थान पर आने वाले को जैतून के पत्तों की माला
0: और तीसरे स्थान पर आने वाले को जैतून का फल दिया जाता था। आइए श्रोता मित्रों, अब चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि हमने कल भी किया था, आपको कार्यक्रम सुनने से पहले हल करनी होगी
2: एक पहेली,
0: और वह भी 30 सेकंड से एक मिनट के अंदर, क्योंकि आज का कार्यक्रम भी इसी पहेली पर आधारित है।
2: पहेली है,
0: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
2: आपके लिए क्लू है,
0: बिहार,
2: शाहबाद
0: जी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए ये लघु गीत।
0: जी हाँ, ये लघु गीत सुनिए, और जब ये लघु गीत बज रहा है तो जल्दी से हमें फोन मिलाकर आज के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
2: उत्तर देने के लिए हमारा IVRS नंबर है
0: 8800440559।

0: तो आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपको कार्यक्रम का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि कार्यक्रम सुनते सुनते आपको आज के प्रश्न का उत्तर देना है।
2: किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली। हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जला डालो।
3: अठारह भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
4: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड।
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
5: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ, लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
6: सुना तुमने?
7: क्या?
6: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
7: हैं?
6: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
7: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
6: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली के मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
7: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे। वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानीपुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानीपुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
8: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो अब कुंवर सिंह का करें?
9: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कबो कुछ हो सके ना। हाँ
10: चाहिए कि जिसके बारे में
8: हुजूर अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
11: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
7: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
11: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
8: जी हुजूर,
11: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिलें।
8: जी हुजूर।
11: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
12: चलो चलो चलो आरा चलो चलो चलो चलो।
5: 26 जुलाई 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी, चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
11: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे।

0: आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है, शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
1: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा, सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
2: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर अय्यर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
2: कुंवर सिंह जिंदाबाद।

0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
1: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
2: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
3: कुंवर सिंह जिंदाबाद।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुई। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अटरालिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया। कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बाह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर कुंवर ने गंगा में बहा दिया।
2: गंगे आज तुझको ही देता हूं ये उपहार।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार। गोली आकर लगी बाह में दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जाह्नवी को मानो नजराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
0: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओ माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: यस सर।
0: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे।

कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए, उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह।
1: ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का दूसरा कार्यक्रम,
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैंने सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: छह एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
3: छह चौक।
5: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
1: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
1: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं? क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
1: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा? मैं खेलूं भी, पहाड़ा भी सिखाऊं?
1: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
5: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आशा है कि आज का प्रसारण आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
1: इसी प्रकार सुनते रहें उमंग,
0: और मन में आने दीजिए नई तरंग,
1: और अपने मित्रों में बांटते रहें
0: नए मन की तरंग के साथ मन की उमंग।
1: अब अजीत और विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग।

मतलब की दुनियादारी, मतलब की।

अब करो भरोसो हर पे, अब करो भरोसो हर पे, करो भरोसो।

जात वह हाट बाजार नहीं जात है मेला।

बने हो, नारी बने सुदर्शन धारी, पग माहौल लगा के रे।

गले में हलवा करे हैं धनिया बने श्रृंगार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन को जे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों, आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।

खोका करे ए धरम छोड़े अधरम खो पकरे नर नारी अरे धरम छोड़े।

करे हैं धनिया पले श्रृंगार मोहिनी रूपी करो

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैलसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों। आज हम जो है कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवक जनित रोग है, उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता

0: उठता या जिसे मिलानी रोग कहते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक-एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है इस बात में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिन आसिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के 1 माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदुरोमी लासिका का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
1: मैम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
0: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं या फिर उन फसलों के बीजों में जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं। तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो
0: हाँ
1: कौन
0: जी
1: कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो
0: जी
1: क्या उनको उपाय करना चाहिए?
0: जी वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको 3 बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकता या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है

0: रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहाँ तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। दूसरे हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं। और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ, और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो लोग जो हैं वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो पर्यावरण भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक जाएंगे। इसका जो है इसका एक जी विकल्प यही है कि शिक्षा
1: जी बिल्कुल आपने सही बात कही है कि शिक्षा एक ऐसा विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर मैम ये आती है
0: जी अब आप जब आप शिक्षित होंगे तभी आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर रस्सी से लगाएं और जंगलों को ना काटें, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको वाली बात ही जानते हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहाँ पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005-7 की बात है कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 7 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ।
1: जी मैम
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहाँ मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था। तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है। अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या शादी करना है वो शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम काम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था,
1: बिल्कुल
0: साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई मिला नहीं जा रहा था, लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा, इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए? इसको
0: रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग

0: हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है, इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा
1: करना। जी धन्यवाद,
0: थैंक यू।
1: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी, जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद,
0: थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता।

0: को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम, आपने समय दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप फिर इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में

आपको एक श्रृंगार सुना रहे हैं। बुंदेलखंड में जब श्रृंगार करके नायिका निकले थे,

बताओ तुम तो स्पष्ट, हमने कहीं देखो सिंगार की बात है के कनहर जैसी डार राम भई कनहर।

बोले कि तुम तो जा बताओ पीली साड़ी बारी या हमने की नहीं, बोले नीली साड़ी बारी, बोले नहीं, बोले फिर कौन, हमने की है, अरे कंजले ठाकुर दई हम ही खा, कंजले ठाकुर दई हम

लटकत आ रही लटकत आ रही कमर में गर्द होनी, मोरी बेला कली। देखो दोस्तों कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है, और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं।

को लाल ला।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों, आज की सभा इतनी संपन्न होते है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92 19 20 77 49। सो